लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सत।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखां किया वड्याई आ।

मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न परावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतहो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

हौ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान युग में सुखवासी, से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा।

हर हर रूप समासी से तन से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह।

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत स्वास्थ्य जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब।

है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दह मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ।

ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप।

अर असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताकि काल निकट न आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट।

गोरी जब महल राज करेगा खालसा आगी रहे ना को ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहि गुरु नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पा जो चढ़दा कर सेम दे गुरु पारे उतारन हा।

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा करी वखियान। वाहिगुरु जी सलोक दखणे महला पंजवां नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या उए जीवन दे विछड़े उए मोया

सभर कप्पड़ पोग नानक प्री वोणी तत्तिया पौड़ी कारण करता जो किया।

पावहे तुर लहना बिन कारवां किशु न लभई जे फिरे सब तरणा गुरमिल भौ गोविंद का।

नानक उन संग मोहे उदारु। सुख मनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम। रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान, नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा।

प्रब कै सिमरन मन की मल जाए। अमृत नामृत माहि समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना। नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कभू ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन नेह चलियासन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहत चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरै से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

नानकहु न सिजई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण विकोट गवावै, एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु का करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहु मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोग नानक तिन पाया, गंत साहु अपनी दे रास, खात पीत वरतैन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले गया, नी मन रोस करे अपनी प्रतीता पही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ती से आज्ञा राख है, प्रभु की आज्ञा मन है मत है, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत, बिर की छाया स्यो रंग लावै, ओ बिन सह मन पछतावै, जो दिसै सो चल नहार, लुप्ट रहे उते अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेहे, ताको हाथ न आवै के हे, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आपले लाई। मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुवस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या फसु पर करत गुमान, अस्त्र पग साथ की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लित विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा। साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाई, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गो बिंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन की निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे घट बस्यो, हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मानी प्रीत मुखो गंड लावत, जान नार प्रभु परवीन, बार भेख न गाऊ भीन, अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन मैं मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पानी तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने आप है, आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत, नेरा पाप सियान सगल ते रह, सबका जाने आत्म की रहत, जिस पाव है तिस लय लड़ लाए, तांत नंत रहा सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत काहि, तिस ठाकुर कौ रख मन माहि, जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै, जे प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मने अंदर, जे प्रसाद कृ संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है, तिसे त्या कतवर लुभाव है, जे प्रसाद सुख से सुई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय, जे प्रसाद तु सब को मान, मुक्ता को जस रसन बकान, जी प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दर गह मान पावै, नानक पद छेती कर जावै, जे प्रसाद आरु कंचन देही, लिवलावो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत, मन सुख पाव है, हर हर जस कहत, जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरु प्रभु उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देही, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलक तना, रात प्रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठ सत तिसै त्याई, जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मनाठ पैर कर तिस कर ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप,
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਔਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਅਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂਡ ਤੁਥਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਪੁਹ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਸੁਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖੋ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਮਾਏ ਸੁਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਕ ਤੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਕਾ ਪੈਰੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭਿਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਚਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡਿੱਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਵਿਖਿਆਨੈ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਛ ਤੇ ਮੁੱਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਬੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵ ਕਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ
ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिशामृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, प्रदीप मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रै रूप न पिख है नित्र, साधक टैल संत संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकूट मदे को ऐसा परसु, बैस नु सो जिस उपर सुपर सन, बिशन की माया ते हो भिन्न, कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस बैस मु का निर्मल धर्म, काऊ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वर नाम जपावे, नानको बैस नु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मलको वै, तिस भगवती की मत उत्तम हो वै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तने अर्पय विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नान कैसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमरत पूजय मूल, सुखम मैं जानै असूल, चौवरना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासन पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व काउकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सु दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर, सगल संगात्म उदास, ऐसी जूत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सोख कहावै, तैसा अर्क तैसा सोख, सदानंद तै नहीं व्योग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ता ईसाई जुगत, नानक पुर कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है, तैसा तिना वापे करन करावन, जो प्रभाव है सोई फुन होग, पसर वाप अंतरंग, लके न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल, श्लोक उस्तत करै अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विधानिक प्रकार, अष्टपदी
कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपेश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्या वह नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेकात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर को पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वह संतर, कई कोट देश भूमंडल।

में जीव है मर है कई कोट भोजन नी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास जिनको मिल्यो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट काणी अर कंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत गिनो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रभते हुए प्रमाय समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सत ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कै दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल मही लसोए अष्टपदी करण करावन करण है जोग जो तुझ भाव है सोई होग किन मैं थप थपन हार अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनिक रंग प्रकार कर कर दिखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाख है प्रभाव है तो पथ सुधार है आप करे अपन विचार है दुआ सिर काप स्वामी खिले बिकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर नाया वह कहु मानुख ते क्या होया वह जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए तो सब पिछले जो तिस पावे सोई करे आन जानत भिख्या मैं रचै जी जानत अपना बचै भरमे भूला दह दिस्तावै निमक माए चार कुंठ फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बालना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई पंथियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर करंग हसै कबहू निंद छिंद व्यवहार कबहू बकास पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहू नृत करै बपात कबहू सोई रह दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए वह बट राजा कबू पेकार नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रभ राखै भी रह गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू सा संगत पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत्येक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मसकीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जिन मरै भोजन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकियां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुई कर गर्भावै तिन समान का संग न जावै बोलस कर मान कूपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाय पसमंत किसन वदया अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे।

नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हार रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्तानी, पूरन पुरख नहीं डोलानी। सुपार भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाऊ साध कै संग। परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लिवला। बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख हो। सेवकी मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

प्रदीप। जब अकार्य कछ न दृष्टेता, पापन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध तिस संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहु किसह व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह का किसोभत परम। अपन खेला वर्ती चा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी। जब एक कह रगम पार, तब नरक स्वर्ग कौ कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरह, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलता अब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे। आपन आप आपिय चर्जा, नानक आपन रूप आपी उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिदर लगत कौकीश। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह परवीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन। जब अपने आप आपुर धारै, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊच अपने आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिय चीरा। बिस्मन बिस्मर

भाग्य सहबे आपत माया आपस को आप आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप आपतियारा तह कौन कथै कौन सुन न हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जय आप रचियो परपंच अकार त्यो गुण मह कीनो विस्तार पाप पुन तय पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर दिखे खेल संकुचे तो नानक एक है जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाकाया पे तनी उनकी शोभा उन्हु बनी आपह कौत करे आनंद चूज आपह रस भोगन निर्जोग जिस भाव है तिसे आपन नाए लावै जिस भाव है तिस खेल खिलावै।

अष्ट पदी। आप कथे आप सुनने हार, आप कहे एक आप विस्तार। जात सुपावे तं सृष्टि उपाई, अपने भाणे ले समाई। तुम ते भिन्न नहीं किच होए, अपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभ जीव आप बुझाई, सच नाम सोई जन पाई। सो समदर्शी तत् का बीता, नानक सगल सृष्ट का जीता। जी जंतर सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा कु जाई,

गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास दा बलिहार, पूरन पूर रहे दयालु, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाले जीयन बहुपात, जो जो रचियो सो तिस हत्यात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया, जन लागा हरि कै नाई, तिसकी आस न बिरथी जाय। शिव कौ सेवा बन आई,

बंधन तोर पै निर्वैर, अन दिन पूज है गुर के पैर। ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपहि मिले। साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करहु विचार, दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत बचन हर के गुण गाऊ, प्राण तरण का यह सुवाऊ।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नौ निदयम।

कोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एकंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन

तिस्जनया भुजाय सर्वभूता वर्तारा सर्वनयना पिकनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जसा पी सुना आवण जानि खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कै मद अलिपतो रहे जो किछ कहना सु आपे कहे आज्ञा आवै आज्ञा जाए नानक जा पावै ता ले समाए इसते हुए सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत्निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सरसाच ओत पोत अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर हुए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत राया जन आवन का है सुहाओ जन कै संचित वै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराधे आ पूरा जा का नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो सास संगगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग भज परमानंद नरक निवार उधारू जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लुक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साथ संग लैन सुख प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जाल विकार से रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभे खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा था की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न हुए आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रित नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा कै मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उदार जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उदारै निर्मल सुबा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहि सुमानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म
ਸਭ

नाम सुखमनि, सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहाले अवतार भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण।

गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंत्र खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह। साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार। आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार। मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर। नानक इवै जानियै सब आपे सचियार। थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निधान। गावियै सुनियै मन रखियै भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हौं जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाई कै जस की।

जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर यह हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतुर सोखे। मूत पलीति कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए। पर यह मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहीं, कर कर करना लिख लै जाहो।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੁਆ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੀ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਨਮੋ ਸਰਬਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਤ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਤ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸ੍ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਹੁਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਬੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ
नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमे अपोगी अपुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्णानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पूजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव आपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जानहि जिह बेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जानहि कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानहि पोर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापहि जिह जाप आद देव अनाद मूरत थापयो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवहि वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपाओ प्रकाश निस्दन आनाश आजान बाहो शाहान शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम इंद्र पह निकाम आत दूत प्रचंड मेत गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद थवा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे पूजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती शांतवा प्रसाद कथते के अशिज दिशह के अभिज पिशह के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लुक के आदित सुक के अवतूत वर्ण के बेभूत करण तेरा जंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपाओ अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहिने के एक है अधीन है कि रुजी रजा के रही मेरे हाके के पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफबुल गुना है कि शाहन शाह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी दहिंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य के सर्वत्र पौण्य है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमें सुलसला में सलीकत मुदा में गनीमल शिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम रजूअल ने धन है हरीफल अजीम रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है निराबाध है अनूप है ओवं आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पहाके सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशिज है अशुत है कि नरकं प्रणाश है प्रीतियोल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणंग सर्वंगत्राणंग सर्वंगकर्मंग सर्वंगतर्मंग सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जात न पाता निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुलसलाम हैं समासुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं
के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहन है के राजक रहन है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खेराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अधीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल एमा है करीमुल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शंतु प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनाश मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जाखल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस वेश अपंड जल थल महंत दिस वेश बेअंत अनुभव अनाश त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खालखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आज जिना बात अन झंज गात अन रंज बात अन टट पंडहार अन ठट अपार आडीठ धर्म आत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर भूल मना शांत त्व प्रसाद करुणा लय है अरकाल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृता कृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबा कृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्युद ज्युदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेबूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे
सदायंग संगे अपंगंग बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरयो कार जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक, संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारी, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पाउन के गौन कौ जात निवारे, पारी पुजान के भूप भली बिद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पय तो कहा पहे भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे, जीत फ्रै सब देश दिशान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूड गजान के, सुंदर हिंसत ही है राज हजारे, भूत पवेख पवान के, भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे, श्री पत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जात तार, सब ऐसो विचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेख है, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चारे सार की धार पशैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़ी गड़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लगैया, साहेब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनिंदन साचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पून प्रतापन बाट जैत धुन, पापन के बहु पूंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्र सवै अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरातप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट इस नानक जादिक दान, अनेक सुअंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस हैं पाग, ते नर फिर न देह धरेंगे, कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो, नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो प्रलोक गवायो, बास कियो विख्यान सो बैठ कह, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धरयो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, काहू पशा को शीस निवायो, को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरे करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संग्रिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया,
पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री आशुतोष जो करे हौ रक्षा, राख ले हो मोहे रखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत दब तब देह अपारा, जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्बकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताकौ कृपाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीने, उत पूज खान बहुर राच दीने, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार तयाय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मोह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस तुज जब पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तसै ब्यापत कोई, अड़िल सुने गूंग जो जाहे, सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाती एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सतरै सहस फण जय, अर्ध सहस फुन तीन कह जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने, श्री असपान कृपा तुमरी कर,
मैं ना कहियो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ शाडुक गहयो तुहारु द्वार, बाहे गहे की लाज आसु गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ शाडुक गहयो

जाति प्रभ अगे अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय।

शासन गरी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास पाचे दर्शन। प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कार नव निध्या वैसाए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पाची दे पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदास दत्ते अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चार ही मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देख चलाई ते वाहे देख जड़ की चतना प्यारा सत्यारा की कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म ही सही दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लुहाइया चरकड़ियां चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके से सत्संग सिंह निभाया तेना ही कमाए जाते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पैसा गुरुद्वार होंगे अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता जित आवण का सद का सर्व सुखो है। जहां जहां गुरु खालसा साहब चरिया है देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बुरबले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिक्खी दान केस दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीमा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु जी बनवाए पंथ सदा शाही दत्ताजियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ला दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे दाने रास। हे गिर बनवास जी आपने आपके चरण अरदास में आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हुए संगत दर्शन दर दे के निहाल दरदार जी बेअंत बाणी के पाठ अज भी रागी संघ ने आपके चरण दरसा की वर्द कीर्तन कीर्तन ने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो हो भुला चुका जी बाणी माफ करो चे पातशाह जी हो भुला चुका माफ करनिया पढ़ी हुई बाणी शोध के सच कण प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सानी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाने मन बुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी में आप जी बख्शिया दाटा बिच पितर कलाम शाह देकर तैयार कर खा देता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गिरुवाज आपके बख्शिया दाता जो नगर तुट सेवा प्रवान करनी गिरुवाज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैली सिंह सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अभी सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा दी भान मगर पालता करो धन धन गुरु दत्ता जी हो ग्रंथ साहब सचे पातशाह विचारा दस दार पिता जी 1984 गरीब नवाज आप दर कर सेवा दहा गरीब नवाज संत बाबा जनहर सिंह जी पिंडर वाले दतार पिता जी साढ़े सारे तो अपनी झोली गरीब नवाज आपके चरणा जाखी करते हैं तारा चरणा के पुत्रता कायम रखने वास्ते हरिमंदर साहब चे पातशाह जी गरीब नवाज गिर दतार जी हो गरीब नवाज बख्शिश की है उद्यम बख्शे उत्साह बख्शे जिन्होंने अपने प्यारे सिंघां दे समेत संत बाबा जनहर सिंह जी ने गरीब नवाज दरबार साहब जी की रख्या बख्शिश करदे होया कुर्बानियां दित्तियां शीश वारे दिता शुभ संगतां वल्लों दरतार पिता जी उन्हां नूं सदा प्रणाम प्रणाम दरतार अजे सारे संगतां अज उन्हां शहीदी दिन मना रहीआं ने उन्हां शहीदी दिन नूं याद करदे आपके पुत्र चरण बसियां ने संगतां आप चरण हाजरी भर रहीआं दरतार कृपा करो बख्शिश करो इत्थे पातशाह जी उन्हां दी इस शहीदी नूं याद करदे होया अज नौजवान पीढ़ी नूं खासा भाव शेख कौम सरदार पिता जी उन्हां दे दरसाहे मार्ग नूं अपनाउण वास्ते बल बलाग बख्शो भावना दा दिन निकालदा करो जी गुरु जी बड़ाई कृपा करो संगतां च पातशाह जी दरदार जी अमृत वेत लैके दाते आई हैं साफ संगतां दी हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां खिलाओ संगतां दा दाते तिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी जी बड़ाई कृपा करो डूढ़ लाइकां बैठियां लाइव कथा की श्रवण कर रही हैं सारी संगतां दी हाजरी प्रवान करो घड़ियां खिलाओ दतारा आपने कृपा जी संगतां नूं बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵਾਧੇ ਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰਕ ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚੋ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਾਦ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ ਬਣਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਗੋਦ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ

रहाओ। आदित्य करै भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सुर ही जाए, तो अनहद बेन सहज महबाय। सोमवार सस अम

नाम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। और वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। मोहे जम डंड न ला गई तजीले सर्व जंजाल। जैसा रंग

करहु कृपा भ्रम चूकई। मैं सुमत देहु समझाय, जोगी सर पावै नहीं तौ गुण कथन अपार। प्रेम भगत कै कारण कहो रविदास चुमार। गौड़ी बैरागण एक ओंकार, सत गुर प्रसाद सत युग सत तेता जगी। द्वापर पूजा चार ती नौ युग ती नौ दिड़े,

आए, जाते आवागवन बिलाए रहाओ। बहुविध धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोय, कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होय, कर्म अकर्म विचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होए वो, सुच कुंचर विद व्यवहार, रब प्रगास रचनी, रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लिलाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत समत सत करी, भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनेक जतन निग्रह किए,

मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग आसा महला पहला, घर पहला सो दर तेरा केहा, सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले

तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे गावन तुदनो रतनो पाए तेरे जेते 68 तीर्थ नाले।

कर कर रखे तेरे तारे, से तुद नो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। होर केते तुद न गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी।

तुम घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे

राग आसा महला पहला चौपदे घर दूजा सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा होई कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा किता के वडचीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह

रात खसम विसा रहते कम जात नानक नावै बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने पावै धीरक पावै धक्के एक वडाई दे जानो जोत न पूछो जाती आगे जात नहीं रहाओ आप कराए आप करे आप गुलामे चित तरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप उपाय आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विच हो जाए साच प्यारा आप करे अवरी कौ साच न दे जे किसे दे वखाण नानक आगे पुछ न ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दौलक दुनिया वाजै साज नारद नाचै कल का पाऊ जती सती कह रख है पाओ नानक नाम विटो कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ गुरु पासो फिर चेला खाए ताम प्रीत वसै घर आए जे सौ वरिया जीवन खान खसम पछाणे सो दिन परवान दर्शन देखे दया न हुए

मानस मूरत नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान, गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किछ दर गै पावे मान, आसा महला पहला, जेता शब्द

पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया, अंदुलै दै सिर मूंड कटाया।

रूप निरालम बैठा, नदर करे विच छाया, बीना शब्द बजावे जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्द अनाहद सो सहुराता, नानक कहे विचारा।

जब लग हृदय नया वह याद, तो प्रवाह के ही क्या की जय, जन्म जन्म किचली जी ली जय रहाओ, मन की मत मता गिल मता, जो किछ बोली है सब खतो खता, क्या मुंह लै की चै अरदास, पाप गुण।

महा दुख देहे भेख वरण दिसै सब खेहे जो उपजै सो आवै जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासै परमल रूप ऊजल मोती चुगै हंस सर्व कला जगदीसै अंश जो दिसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल न दिसै रहाउ बिरला बूजै पावै भेद शाखा तीन कह नित भेद नाद बिंद की सुरत समाए सतगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवानतो राजन राज सदा बिकसंतो जिस तू राखै

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त न आवे। जो जन्मे सो रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, चल तो मन राखे अमृत चाखे। सतगुरु सेव अमृत शब्द पाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए। नानक विचो आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अण दिन नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नव निद पाई, रहाओ कर्म धर्म सच सचा नाओ। ताके सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान। तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया तन नारी। हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरे संगत कुल तारे। सतगुरु सेव तत् विचारे, हमरी जात पत सच नाऊ। कर्म धर्म संजम सत पाऊ, नानक बक्से पूछ न होए। दूजा मिटे एको सोए, आसा महला पहला। एक आव है एक जाव है जाई, एक हर राते रह समाई। एक धरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत भौजल। गुर शब्दी हर पार लंघाई, रहा जिनको आप लय प्रभ मेल। तिनको काल न सकै पेल, गुरमुख निर्मल रह प्यारे। ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारे, बुरा भला को किसनो कहिए। दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार। मिल गुरसंगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद। अठसठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल न लागै। नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागै, आसा महला पहला। निव निव पाए लगो गुरे अपने, आत्म राम निहारिया। करत विचार हिरदय हर रविया, हिरदय देख विचारिया। बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभै। मिटे अज्ञान हुए उजियारा, रहाओ। रवनी रवै बंधन नहीं टूट टूटे है, पिच होमे भरम न जाई। सतगुर मिले ता होमे टूटे, ताको लेखै पाई। हर हर नाम भगत प्रै प्रीतम, सुख सागर उरतारे। भगत वच्छल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे।

संत जना का मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उतरे जन कोट। हर जस करते संत दिन रात, हर हर आओ कद साधक मात, हर जन के हर नाम निदान। पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते दंगे के, नानक जन का बिरत विवेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को त्रिपुत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर नभंग, हर का नाम जन की

रमैया के गुण चेत पुराने, कवन बोलते कवन दृष्टा ने, जिन तो साधु सुबारिश कर रहा, कर भगन व्यंजन उबारिया, बात व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सोध।

ओ प्रभु दयाल करतो तुम सुखी मानस दात लोक विचारा करे दिन रात। बाहर देख अंतर मन मा सब सनाहे कश कर बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर

कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जीव पिन सब तेरी दास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरे कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुम लांत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र।

अष्टपदे जेहि प्रसाद सती अमृत खाहे तिष्ठा गुरु को रख मन माहे जेहि प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जेहि प्रसाद वस सुख मंत्र तिसै ध्याय सदा मनंतर जेहि प्रसाद ग्रह सम सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जेहि प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याइयै ते आपन जोग जेहि प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कतबर लुभावै जेहि प्रसाद सुख सेइ दुसोइ द मन आठ पहर ताका दस गावी द जेहि प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को दस रसन।

अष्टपदे साधक संग मुखोजल होत साध संग मन सकदे होत साधक संग मिट बिमान साधक संग प्रगट सु ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नेदा साध संग सब होत नवेदा साधक

ऐसे जन्मा का मन आलिप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सबको सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंगपुर लगे तुल पवन ब्रह्म ज्ञानी के धीरजे जम सुधा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाव नानक ज्यो पाप कसै सुपहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लगे जल ब्रह्म ज्ञानी कह मन हो प्रकाश जैसी तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उर्दी उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक जिन प्रभाप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल करे नाथम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया ब्रह्म ज्ञानी दे कशपुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कहना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता अवध बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी का घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी संहिता ब्रह्म ज्ञानी का होया चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मान माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जन भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जया दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखान है ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जन है ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव निवरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तारे जो अंतर नाम सर्व में पिख भगवान नेमक नेमख ठाकुर नमस्कार नानक बरस सगल निस्तारे अष्टपति मिथ्या नाही रसना बरस मन मह प्रीत निरंजन दर्श बरतर रूप न पिख नेत्र सत गिट संत संग हेत करन न सुने कहूं की निंदा सब ते जाने आप सुख मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बसना मंदे टर इंद्र जित पंच तोक ते रहत नानक कोट मध्य कुवैसा परस वैसन सो जैस ऊपर सो परसन विसन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वै ने कर्म दिस वैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बच है केवल भगत कीर्तन संग्रह जय मान धन अंदर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वरै नव जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पाप अमल खो वै तिस भगवती की मात उत्तम होवे भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के जन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म है सो दे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित गए उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जन अस्थूल चहु वरना को दे उपदेश
नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहो वर्णम जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन को कर कृपा अंतर और तारे पस प्रीत मुग्ध पत्थर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत किते न पाये धर्म नानक दिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने त्री आया दास संदन पाई दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गा प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सकल संग आत्मा उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आगे आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे ते स हरक ते सोग सदा आनंद ते नहीं बियो ते सा

महा क्रोध विकराल, कबहु सर्व की हो दुर्वाल, कबहु होय बह बड़ राजा, कबहु पे खारी निज का साजा, कबहु अपकीर्त मह आवे, कबहु पलाप लगावे, ज्यों प्राव रख तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहु होय पंडित गरीब ख्यान, कबहु मन तारी लावे ध्यान, कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवे न जावे, जो तिस पावे सुई होए, नानक दूजा अवरन कोए, कबहु साध संगत एह पावे, उस स्थान दे बह न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रतेक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म गै संग, ज्यों जन्मै जलै कटाना, त्यों ज्योति संग जोत सुमन, मिट गए गावन पाए विश्राम, नानक प्रभु।

मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तार है को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दिस जाए प्रभ कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे सहज खटे लख कोट धावे त्रिवतन आवे माया पाछे पावे अनेक भोग बिखिया के करे नह त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं गौरा जय सुपन मनोरथ बिरते सबका जय नाम रंग सर्व सुख होय बुढ़पागी किसे प्राप्त होय करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करन हार इसके हाथ कहां बीचार जैसी दृश्य करित सो होय आपे आप प्रभ सोय

बृहस्पति। मानो कीट एक व्यक्ति सब जान देव को एक भगवान जिस गह दिए रहे अकाय बहुन तृष्ण लग आय मारे रख है एक आप मानुख कह किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होई तिसका नाम रखंड पुरोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक बिघ्न लगे कोई उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर लह जियो नैनो बेग ठाकुर का रंग साध संग बिनसे सब संग चरण चलो मारो गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दुख नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जगमाए सदा सदा हर गए गुण गाहे राम नाम जो करे विचार सी धनवंत गिरी संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन होते सुखी एको एक एक बचन इत उत कियो सो जी जन नाम संग जिसका मन मने नानक तिन है निरंजन जाने गुर प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जान तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखयान ग्रस्त मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जान की आसा तिसकी कटिए जम की फसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसहन लगे दुख जिसको हर ब्राह्मण जित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा।

सो सूखम सोई असूल नह किस जन्मे नह किस मरे आपन चलित आफी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट अज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रट थाप ओ थाप अवनासी नाही किश खंड तारण तार रिह ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप अवज पैद नानक जाप जैन प्राप जाता सो सोभावंत सगल संसार उतरे तिनमंत प्रभ की सेवक सगल उदाहरण प्रभ की सेवक दुख विसारण आपे मेन ले कृपाल गुरु का शब्द जाप पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुपाई होवे सो होई करने हर पिछड़े सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टना जिस ते उपजे तिस माही समाए ओए सुख निदान उन्हों बने।

नानक सोजन सदा आरोग। ज्यो मंदिर गोथो में थमन त्यों गुरु का शब्द मन है स्थमन। ज्यो पाखाण नव जड़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास। ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु सांग मेल जुद प्रगटावे। तिन संतन की बाशा तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिरलाई पुरब लिखे का लिखिया पाई। दुख सुख प्रभु देवन हर अवर त्याग तू तिस है चितर। जो कश करे सोई सुख मान भूला कहे फिर जान कौन बसाई। तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे नानक पद से ती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद खेव संत संग चाल। अवर त्याग बिखे जंजाल तन तन कहे सब कोय। मुख उजल हर दुर्गह सोए इहो वापार बिरला वापार। नानक तां कै सद बलिहार। चरण साधक धोए धोए पियो अर्प साधकु अपना जियो। साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान। सा सेवा बड़ भागी पाइये सा संग हर कीर्तन गाइये। आनक बेगन ते साधु रख है हर गुण गाय अमृत रचक है। ओट गए संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाय। मृत गौज वाल नहार भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे कलहिण पाय। साव कैसे तिस का उकरण जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग। जाप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत तेस जन आवे हर प्रभु चीत। भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय एक होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत।

सत सत प्रसन्नार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करण करावन तन मूल पछान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय तेंद्र पहोय बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहले बस्त गडाई ताको भिन ना कहना जाई बूजा बूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर कौ सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक कौ प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै अपने जन का प्रदाटा कै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक कौ नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गातमित कोई न लख है प्रभ के सेवक कौ को न पहुँच है प्रभ के सेवक ऊंच दे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रख है पसम करै लश्कर कोट लख है जिसका सास न काटते आप ताको राखत देख रहात मानस जतन करत बहु भात तिसके करत ब्रथे जात मारे न रख है वरना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख बड़ाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एह मन तन तरपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकेश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृपताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सद काम।

अष्टपदी जाचक जनजाचय प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाव सास सास प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग उपज चाओ साध कै संग परे शरण आन सत्याग अंतर प्रकाश अन धन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भगति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे कारणा पाना है सो क्यों बिसरे जे किया जाना है सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह रख है गुरप्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरे जे बिखते कांड है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुर पूरे तत् यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भगति तनहो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूटत जात पाए विश्राम सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपहो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तनंतर ही सुहाओ नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन भिक्षा साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्राभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करणी सोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरम

अष्टपदी। जब आकार एह कश न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक शोक कहो किसे व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेले आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किसको गनी, जब एक है हर अगम पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन है अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए, तब शिव सकत कहो हो कित ठाए, जब आप है अपनी जोत तरह, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपने चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुखे अपने आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए, जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर अगाते, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपने आप ही चर्जा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कह हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तह किसे भूख कमन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते काना है सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला पह परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उतार है, तब सगने अप सगन कहाँ विचार है, जह आपन ऊंचे अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जह अशल अशेद अपेद समाया, उहा किसे व्याप्त माया। आपस को आप है आदेश, तेह गुण का ना ही प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता, कह कौन अचिंत किस लाग चिंता। जह आपन आप पतियारा, तह कौन कथ है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच दे ऊंचा, नानक आपस को आप है बहुचा, जह आप रचियो प्रपंचकार, तेह गुण मैं कीनो विस्तार।

सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखियान। आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अभिगत भगत तहे आप जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहु पाख का पह तनी उनकी शोभा अनुह बनी। अपह कौतिक करे अनद चोज अपह रस भोगन रजोग। जिस पावे तिसे आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा है आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जात सुभावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किस होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जिये जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी।

से अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक घट माहे अनेक रंग नानंद रिष्टाहे नौनि ते अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाय चरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कटकट व्याप रहिया भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्मा जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बै संतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूर नखियत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहु डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक तन में एव विशास संत जना का प्रेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संगरचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समोही आप सात किया सब सात तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिसे आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए सर्प भूत आप वरतारा सर्व नैने आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तनाया अपन जस आप ही सुना आवन जान के खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मादा लिप्त हो रहे जो किस कहना स्वापे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां लय समाए इसते होए सुना ही बुरा उरे कहो हो किने कश करा आप भला करतूत अत निकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत्या अपन संग्राच ताकि गदमित कहीं न जाए दूसर होए तां सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप में लाए लाए प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का है स्वाव जन के संग चित आवे नाओ

शिव का ने जाप करवाए, आप संगठन ने सरवण किए हैं। सो महाराज परिवार को चढ़ती कला में रख, बच्चों को विद्या की दान, सुखी जीवन, गुरु घर का प्यार सत्कार बख्श। आओ सारे मिलकर अनंद साहब जाप करिए, फिर अरदास शामिल होना होगा।

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ राग वह गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आशा गुन गुनी ऊंचे

जित सेवे दरग है सुख पाई है, नाम तिसै काली जय। आगे हुक्म न चले मूले, सिर सिर क्या विहाना, साहिब सिमरहो मेरे भाई हो, सबना ए हो पयाना। जो तिस भावै समरथ सो थीऐ, हीलड़ा एहो संसारू, जल थल महियल रव रहिया, साचड़ा सिरजन हारू। साचा सिरजन हारू अलख अपारू, ताका अंत न पाया, आया तिनका सफल पया है, एक मन जिनी ते आया। ढाहे ढाहे उसारे आपे, हुक्म सवारन हारू। जो तिस भावै समरथ सो थीऐ।

सब को जासी कूड़ करहु अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो। वड हंस महला पहला, आव हो मिलो सहेलड़ी हो, आव हो मिलो सहेली हो, सचड़ा नाम ले हां। रोवह बिरहा तन का आपना साहिब संभाले हां, साहिब संभाले पंथ निहाले असा पे उथे जाना। जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तिसे का पाना, जो तिन कर पाया सो आ गया आया, असी के हुक्म करे हा। आव हो मिलो सहेली।

साहिब आपना कुदरत करे बिचारू, कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी आसु जाने, आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किछ किया सूई जाने ताका रूप अपारू, नानक किसनु बाबा रूई बाजी है एहु संसारू, वडहंस महला पहला दखणी, सच सिरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारू, जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलख अपारू, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ेन गुरबिन घूर अंधारू, सूरज चंद सिरजियन अहनिस चलत विचारू, सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारू, रहाउ तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारू, नारी पुरख सिरजै बिख माया मोह प्यारू, खाणी बाणी तेरिया देह जिया आधारू, कुदरत तख्त रचाया सच नबेड़न हारू, आवा गवन सिरजया तू थिर करन हारू, जम्मण मरना आए गया बदक ज्यों बेकारू, भूडड़ै नाम विसारिया बुढ़डै क्या तिस्चारू, गुण छोड़ बिख लद्या अवगुण।

रूप ना जाने सोहनी है, हुक्म बद्धी सिरकारू, बालक बिरध ना जाननी, तोड़न हेत प्यारू, नौ दर ठाके हुक्म सच्चै हंस गया गैनारे, सात अन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगन ने बारे, सुरत मुई मर माइये महल रुन्नी दरबारे, रोव कंत महेली हो सच्चे के गुण सारे, जल मल जानी ना वालिया कपड़ पट अंबारे।

सच खरा सचियारूवा कूड़ लब जा थाए न पासी अगै लह न ठाऊ अंतर आओ न बैसो कहिए ज्यो सुन्ये कर काऊ जम्मन मरन वड्डा वे छोड़ा बिनसै जग सुबाई लब तंदै माया।

सहन मिलो संजोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग मह, दुख सुख लेख लिखाया। लिखियाड़ा साहा ना टले, जेहड़ा पुरब कमाया। बह साचा लिखिया अमृत बिखिया, जित लाया तित लागा। कामण यारी कामण पाए, बहुरंगी गल तागा। हुची मत भया मन हुचा, गुड़सा

0: रूप है सच सुमाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जग रचना सब झूठ है, जान रहे हो रे मीत, कह नानक चिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। स्वर्गवासी सरदार पैर सिंह ढिल्लों जी दे निमित्त श्री सहज पाठ के भोग से उन्होंने निमित्त कीर्तन से अंतिम अरदास आ के हाजरियां भरन लई हाजरियां भर रही पंच सत्कार जो सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो हुणे आप जी ने भोग ते अलाणे दे पाठ सरवण कीते ने। हुण समय नूं मुख रखदे होए मैं बेनती करां भाई साहिब सुजीत सिंह जी तसीला ते उहनां दे जथे नूं हजूरी रागी श्री मंगला साहिब दिल्ली वाले ते हजूरी रागी सैनो दे गुरु घर वालिआं नूं कि उह आप जी नूं लाही बण दे कीर्तन सरवण कौणगे। उहनां नूं समय दा पता है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।